ए आज शिंक शांग आज इ तो हयु एया असहनाथ ए टी आयु सहो रेक्रिएशन बसना आदो पब्लिक हेल्थ द ए आज ए शिं पे बस्ताहोन तो टी दुखी शिं थोल्स सो ए तहना जिंग ए नहस आ तो ए दात इन सिं च नहुल जी सो ये गो तीस दू गो द आज द ये ए यन द बेस तो द ए आज द थो की द ए ते लास ए आज ए टी हुत ए गी बनीना आयु अष्ट इन नि ए बसना स्ने दानीला ए आज द ए हत अशिं पाना होन आज शिं द ए नल खा तो आज शिं द खुत अ द ए पा पाच हत अन लास तो आरोतीत एया निगे फॉर कॉलिंस कोलोराडो आरत एया नात हने कोलोराडो जे अनहि आस आजत एया ता निगो ती एया ना कि एया पैरामेडिक्स जे लिंगो तमोरो तीच ना अनशाता आज एया साबे हा हिंस इंगो एया होलशिश जुन्दे आज एया पहना दीसा आज शीत एया The ketamine, and ye are you belah el yab a e, but sando ead inakit eant e Elgin McLean eol yend it than e di his teen ea nakajini eantle e aja ea salau chitabost e aja ea ayego netje aja hot od. Anna let the ea what otra ea holjish danila e aje kutzagit ea benina e a hanadot e no aje konanalia e di sa paramedic shalona ki aje ea shin what o nah ne kitolis danila e ea shin di la da yaj da has adot Da is sunny da e aj shin petat is abnina. Aj shin hanana di 2019 at da ita ea dahot in de danila nakoti paramedics jalini in nishtelt ego ea da nigo da ea adult ini ea jilia la do nahot e kido. Ani it is no shin pe das dot.